जी, सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी धरिया, सिर सिर रिजग संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया, उडे उड़ आवै साय कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कमन खलावै कमन चुगावै, मन में सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए,

आख मोहे मन करम बचन विचार चौपाई मैं नाग्रश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन साओ लिबलागी मोरी पग इन साओ।

अब ना जान मुझे प्रत परिया, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया, देख तेग जग में दऊ चल, राखा मुहे और ना दल, तुम मम करो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा।

आनंद भया मेरी माए सात गुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन मजिया वाधाइया पराग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया।

अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई।

रहाओ। मैं हर बिरही हर नाम है, कोई आण मिलावे माए, तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। सतगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भागहीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए, ओए जम दर बदे मारी है हर दरगह मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय, हर धार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए।

इतनी सेवा प्रदान करने जी प्रयत्न करते हैं, प्रभु दे माफी बख्शने पर सब भाई आगत सिंह जी आप जी पितृवाणी कथा राही जोड़न पासू प्यास के सगन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हिरदय क्रोध जलाए जियो मन हिरदय क्रोध महा बिसलोध निरपता वै लड़ दुख दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हो मैं अहंकार बधाया।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

शांति। सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे, सज्जन सच्चा पातशाह, सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतन अवरना काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी।

नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल क्लेश तन माय मिटावो सिमरो जास वसमरे कै नाम जपत आगंत अनेकै वेद प्राण सिमर सुधाखिर किन्ने राम नाम एक आखिर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी ना आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानकुन संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्व नाम वसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभु सिमरत कश बिघन न लागै प्रभु कै सिमरन अंधन जागै प्रभु कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानकार रंग प्रभु के सिमरन नरिद सिद नौ निद प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिन से दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभु के सिमरन दरगे मानी प्रभु के सिमरन होय सो भला प्रभु के सिमरन सफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक तक लागो पाए प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सबके सुजय प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन परवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा अवनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से पर उपकारी प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरे

से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख वे आवे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन अंधक नेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नान सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे प्रभु के सिमरन कबु न झूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सह समानी प्रभु के सिमरन नेचले आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रसिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जिनको प्रभ में आ नान तिन जन सरणी पै हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नी चौ कुंड जाते हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल कारा हर सिमरन में आप नंकारा कर कृपा जिसया बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानके प्रभ साथ अष्टपरी जय मात पिता सुत मीत ना भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाय जय मां भ्यान दूत जम दल तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिरमाए उदारी अनक पुन है चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल श्रिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तरे अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत अगावे जे मार गे जात केला तै हर का नाम संग हो सुहेला ऐसा नाम अनसदा त्याये नानक गुरमुख परम गत पाईये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जप तै पार पराही अनक बिघन जय आय संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जौन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मलकबू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाये साध कै संग जे मार के गन जाय न कोसा हर का नाम असंग तो साज पेंडे महान गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को नाम सियनु हर का नाम ते नाल पछानु जय महा भ्यान तप्त बहु काम तै हर के नाम की तुम्हे ऊपर शाम जहां त्रिखा मन तुज करखे तै नानक हर हर अमृत बरखे संत भक्त जना की वर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओढ़ हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखत साधक मात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक नान जन के मृत विवेके हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत किस नाय वियोग

संसार के संग सब कुल उधारे साध संसार जिन मीर कुटम निस्तारे साधु के संग सोतन पावे जिस तंते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग ने कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध के संग कलूक धरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यावा सुवेला साध संग विचरत मेला जोई छे सोई फल पावे साध के संग न मृथा जावे पार ब्रह्म साध रद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग नमंते विसरे साध संग सर्व निस्तरे साधक संग लगे प्रमीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध

कर आत्म नहीं धरवे हर दरगे को कैसे कवे आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवे सर्व की रेन जा कमन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछोए तब इसको सुख नाई कोए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाई चीत जब लग मोह मग्न समाए तब लग धर्म राय देश जाए

कैसे समझे आप या पे रचा सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब किस का वो करने हार उसते पहन कहो जो हे दान धनंतरे कैसो हे अपने चलते आप करने हार को तो करे रंग पार मन में आप मन अपने माए नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्र स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन विरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर या पार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कड़ कर सुनी सरण वख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत संत सन जो जन परे सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बोर बोरे अवतार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हृदय को रखे न कोए संत के दुखन थान पृष्ठ होए संत कृपाल कृपा जे करे नान संत संग निंदक भीतरे संत के दुखन ते मुख भवे संतन के दुखन काग जन लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगद जोन कर्माए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को छले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संत दुखी का था को नाए नान संत पावे ता होए भी गात पाए संत का निंद कमात आए संत का निंद खंड कर न पाए संत का निंदक मां त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतेहीन संत का निंदक दुखियारधीन संत के निंदक को सर्वरोग संत के निंदक को सदाभियोग संत के निंदा दोख में दोख नान संत भावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे कारी मित संत के दुखी को डान लगे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख न सुख दे डरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत भावे ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीत टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है

मृत को जीवालनहार भूखे को देव गदा देवत आधार सर्वनिधान जाकी दृष्टि माए पूर्व लिखे का लहना पाए सब के तिस्काओ करने जो तिस्मिन दूसर हो न होग जाप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उज निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल दिया जाके मन गुर की प्रति ते जन आवे हर पव चीत भगत भगत सुनिए ते लोहे जाके हृदय को होए

करे भगत आत्मके चाहे प्रभ अपने सो रहे है समाये जो आहो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म शाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूरे कौ नान से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंतने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु बिछाता सो जन सर धोखा दाता तिसकी सरन सर सुख पावे तिसके दस सब पाप मिटावे और सियान बिसगली छाड़ तिस जन की तू सेवा ला।

उतरे चंद आस नित्या गोत्रंग संजना की धूर मन मंगे आप छोड़ बेनती करो सा संग अग्न सागर तरो हर तन के परले ओ भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार।

उत्तम श्लोक साध के बचन अमली लाले रतन संत कुमावत हो तो उधार आप तेरे लोका निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन अंद करे प्रभु गाजे प्रटे गोपाल मान के माथे नानक उतरे तिनके साथे।

सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक ने भी खेप मारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्वेशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बो न होवे आवन जान हरतन घाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्व सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सकल देव दास सुंदर चतर तत्का वेता समदासी एक दिष्टेता

तिस गुण कोय करे। सुनया सिद पीर सुरनाथ, सुनया धर तबले आकाश, सुनया दीप लो पाता, सुनया पोय न सक्या काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनया दुपाव का नास। सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख सलाहन मंद, सुनया जो जुगतन भेद, सुनया सास सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास, सुनया दुपाव का नास। सुनया सत संतो ज्ञान, सुनया यासर काय सुनान। सुनया पड़ पड़ पाप हैमान, सुनया लागे सह ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुनया दुपाव का नास। सुनया सरा गुणा के गाव, सुनया सेख पीर पातशाह, सुनया अंधे पावे राह, सुनया हाथ होवे असगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनया दुपाव का नास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछुताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बैकरण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन न सुरत होए मन बुद्ध, मन न सगल पवन के शुद्ध। मन न मछुटा न खाए, मन न जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन न मार्ग ठाक न पाए, मन न पशु प्रगट जाए।

पवन अपेख। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मंडान मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव हैं दर के मान पंचे।

होए किता तान सुआलो रूप केते दा जन कौन कूत किता पसाओ को आओ तिस्ते होए लख दरियाओ।

कार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सुर मो

असंख मोर कंध कोर असंख चोर आराम खोर असंख कमर कर जाए जोर असंग गलवड़ हत्या कमाए असंग पापी पाप कर जाए असंग कुड़े आर कुड़े फेराए असंख मिले जमल पख खाए असंग नंदक से करह पार नानक नीच कहे विचार वारे आना जावा एक वार जो तद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाम।

ही परिकार, तो सदा सलाम निरंकार, पर ये हाथ पैर तंदे पानी तो तय उतर सके, मूत बलि ते कपड़ होए दे साबन नहीं है ओहो तो है, पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावे कै रंग।

अंतर का तीरथ मल नाम। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वास्था बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सवेला भगत कवन, कवन थित कवन वार, कवन

कुरान। तेतवार ना जोगी जाने रुतमाव न कोई, जं करता सृठी को साधे आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सलाही, क्यों वरनी किव जाना, नानके आखण सबको आखे एक दो एक सियाणा। वड्डा साहेब वड्डी नाई, किता जाका हो वै, नानक देखो आपू जाने अगे गया न सो है। पाताल पाताल लख आगा साई आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कैन कुवात। सह सु अठारह कैन कते बास, लो एक तात, लेखा होए त लिखिया, लेख होए विनाश। नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप, सलाही सलाहे ते सुरत ना पाईया। नदियां ते वा पवै सुमंद ना जानिया, सुमंद सा सुल्तान गिरह से ती माल तन। कीड़े तुल ना हो निंजे तुस मन हो ना विसरै, अंत न सिवते कह न अंत, अंत न करने देन न अंत। अंत न वेखण सुनन ना अंत, अंत न जापै क्या मन मंत।

जोर न जीवन मरण जोर जो न राजमाल मन सोर जो न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटाई संसार।

है वह है जीत है पीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जय है जाद है अजन्म है वर्ण है भूत है भरण है गंज है बंज है जूज है जंज है मीक है रफीक है दंद है मंदर मूज है सूज है काल है लाल अकाल है जाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अली के नृसिक है निलंब है संभ है गम है जम है भूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गा है मान है निदान है नेक है फिर एक है पुजांग प्रजा छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे भेखी अंबेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे नंगी नाते नंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाते समस्ति विपुते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रेश्रम परम रूपे नमो जो जोगेश्रम परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरम परम बिरदे नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लो माता भेखी परमी भोगी भुगते नमो जोग जेश्वरम परम जूते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अपरे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो रारूपे नमो शाशाह नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो श्रेष्ठ नमो तंत्र तंत्र सदा सजदानंद सर्व प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बिरद करता आदुद्वार आगम ओग हरता परम परम परमेश पुष्पालन सदा सर्वदा सिद्धाता दयालन अशेदी भेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्त सद्धाम तेरा जोर चाचरी शन जले हैं थले हैं पीत हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं भेस हैं भुजंग भुजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ते निदाने नमस्तम नराथे नमस्तम परमाथे नमस्तम अगंजे नमस्तम अपंजे नमस्तम अकाले नमस्तम अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे नमो राज राजे नमो सा साजे नमो शाह शाह नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीत नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कीर्तन नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अरंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे खिजे भिजे समस्त प्रसिजे कृपाल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदनवासी चर प्रसन्नवाय प्रसाद अमित कर्मे वृत धर्मे खल जोगे अचल भोगे चल राजे अटल साजे खल धर्म लख कर्म सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भाने सर्व माने सर्व त्राण सर्व त्राण सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व देवन सर्व पेवन सर्व काले सर्व पाले रुवाल छंद प्रसाद

खेल खेल अखेल खेल अंत कुफर एक दे भेव न जानी जे बेद और कतेव रूप रंग जात पासो जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन्मन विहीन चकर बकर फिरे चतर

चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दान्य चतर चक्र जान्य चतर चक्र भर्ती चतर चक्र भर्ती चतर चक्र काल पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाचरी छंद न सतरे न मित्रे न परम न पितरे न कर्म न काये अजन्म न जाये न चित्रे न मित्रे परे पितरे प्रति से आदि से आदिर से अकृषे भक्ति छंद प्रसा कत्ते के शिज देसे के पिज पेसे के गंज करमे के पंज भरमे के पिज लोके के उदित सोके के बदूत बरने के विपूत करने के राजम प्रवाहित के राजम प्रवाह के धर्म तुझा है के अशोक बरने के सर्वा भरने के जगतं कीर्ति है के शत्रं क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद देव के आप पेव के चित्रम बहीने के दीने के रोजी रजा के रही मेरा के पाक व्यव के गै भूल गैव के अमूल गुना है के शान शाह के कारण को निंद के रोजी दहने के राज करही मैं के कर्म करी मैं के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देसे के सर्वत्र भेसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसे के सर्वत्र भेसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देस है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानिए देव प्रधानिये के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कली में के परम पई में के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तमामल रजू है हमे सल सलामे सली खदमदा में गन्नी मल शकिते गरीब अल परस्ते बिलंदल मकान है जमीन अल जमाने तमीजल तमामे रजूल निदाने हरी फल अजीमे रजाय के जकीने अनेकल तरंग है भेद है पंग है जीजुल निवाज है गनी मल कराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है परभुक्त परवाह है सुयुक्त सदा है देव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सब साज है समस्त सलाम है देव काम है निर्वाद स्वरूप है गाद है अनूप है ओ अंगाद रूपे नाद स्वरूपे नंगी नाम है त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिवादे गंजे गादे सुभंग सर्वागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है शिष्य है श्रुत है के नरकम प्रणास है प्रतिवल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद

प्रसाद नमो नर्कनाशेषदेव प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं भूते प्रमादं प्रमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोतरे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते

तुम बसें जस के जसें भुजंग प्रजा छंद नमो सुसु जे नमो चंद चंद्रे नमो राज राज नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संतान संसाद रूपे नमो परम तत्व नतन स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नाद भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसा से नमो बाम बंके भंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगे त्रिकाले नंगी कामे एक श्री छंद जल अभय अभय मूजू नास कास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख भेख

अंजल नामे समस्तल निवासे निर्काम विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचदानंद सदर्म प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंकरियंकरीमल रीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्रभुक्ते स्वम

समान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म है सर विष्ण सची पद अंत जम फास परेंगे, जे नर श्रीपद के प्रसें भक्ते नर फेर न दे तरेंगे। कहां पे हो जो दो लोचन मून के बैठ रहे हो, भक्त ध्यान लगायो। नाथ फिर लिये सात समुद्रन लोग गयो, पर लोग आयो बास कियो विखियान। सो बैठ के ऐसे है सुबह इस बतायो, साच को सुन लियो सब। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काउ लपान पूजत रहो सिर काउ लिंगरे लटकायो। काउ लख्यो अरवाची दिशावे, काउ बिछाको शीश निवायो।

अक्षर तीर्थ जी नाव है उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसे रंग रो

परम सम्मान योग चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत जी आते टीवी राही मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले पावन फुरमान बख्शिया वो पावन शब्द पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रसना तो उच्चारण

ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसम पातशाही आदि जोत

नारी पंचम हरख दिशाख सुनावह बंगालम मद माधव गावह ललित बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया मालक सकिया लाप है संग

मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार बेल ना पाइया पंडती जे हुआ लेख पुराण भक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिरठी को साजी आपे जाने सोई केव करे आखा केव सा लाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा

अंत ना पाए जाहे। एहो अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होई। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोई।

गावे है चित गुप्त लिख जाने है लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे है इंद इदासन बैठी देवती आदर नाली गावे है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति

जिब तू चलाए हे तिवै चल हे जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा ध्यावहे जिसनु कथा सुनाए हे आपनी से गुरुद्वारा सुख पावहे कह नानक सच्चे साहिब जो पावै तिवै चलावहे एहो सोहिला शब्द सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वस्या जिन ध्रुह लिखिया आया एक फिरे कनेरे करे गला गलनी किन ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए सेजना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत सियो पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए न जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सह सह जीव मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो बहो शब्द लाग हो हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इहो सहसा इव जाए जीयो मैले बाह रहो निर्मल जीयो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया एह तसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुनह नाही फिर है जो बेतालिया कह नानक जिन सज तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जीयो निर्मल बाह रहो निर्मल बाह रहो ता निर्मल जीयो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रहै परणै गुरबिन अवर न जाणै कोई कह नानक सुनो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो बेकिया जाए अनेक जूनी भरमे आवै विण सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो विण सतगुर मुक्त ना पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नजर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपिहो सारग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी चित जिनका हिरलया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हो असमाओ शब्द सेती मन मिलिया सचै लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द

तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जन जीओ उपाय जगत दिखाया।

इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान होआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया।

0: आज अस गोविंद दास तुहार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।
1: तुदे आगे अरदास हमारी जीओ, पिंड सब तेरा कहो नानक, सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही, दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लही त्याय, फ्री अंगद गुर ते अमरदास, रामदासी होए सहाय। अर्दन हर गोबिंद सिमरऊ, श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताए, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। ऐस वेले श्री अखंड पाठ साहिब दी संपूर्ण तापरंताप जी दे पावन स्वरूप दे सुख आसना दी सेवा होई है। चौपी साहब का जाप होया, बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। आप जी पावन सवारा साहब सचखंड विखे जा रहे हैं, चाले पाउंदी आग्या बख्शो, रस्ते विच वाद कर दे साई होना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

जल संग संतन के पाइए परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ कुछ समय वास्ते गुरमत विचारां दी सांझ पा सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंगला चरण दे रूप विच आप जी ने पंजवे पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रचना तो उच्चारण किया हुआ पावन शब्द जो जैतसरी राग विच गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है आप जी ने सरवण किया। उस दे विच पहले पदे नू ही सतगुरु जी ने रहाउ दा बंद बनाया। गुरदेव बख्शिश करदे ने कोई जानै कावन ईहा जग मीत। कहन लगे कि भाई कोई विरला मनुख जानदा है कि इस संसार विच असल मित्र कौन है। मित्र तां असी बहुत बना लैने हां जदों आपां वेखदे हां दुनियावी तौर ते बचपन विच मित्र होर ने बच्चा होर अगे पढ़ाई वास्ते गया मित्र होर बन गए होर अगे गया मित्र होर बन गए जॉब ते लग्या मित्र होर बन गए अगे तो अगे इस मनुख दे मित्र बनते जाते ने। हुंदा यह है पहले मित्रां नूं ए भुलदा जांदा है तो नवे मित्र बनाई जांदा है। पर जदों गुरबाणी नूं पुछिए ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे प्यारे

ऐसा है गुरु रामदास महाराज का दर दिते समय की समाप्ति है। गुरु रामदास पातशाह महाराज आप दाता वंडन वाला गुरु है, आप दाता वंडन वाला पातशाह है गुरु रामदास महाराज। जेड़ा बंदा भी गुरु रामदास महाराज के दर नाल जुड़ जाता है गुरु रामदास महाराज ओनू भी दाता वंडन वाला बना दिंदा है, बादशाह बना दिंदा है। जेड़ा भी बंदा गुरु रामदास महाराज के दर नाल जुड़ जाता है भावे वह किसी भी धर्म का है किसी भी मजहब का है, गुरु जात पात नहीं वेखता, गुरु की वेखता है भावना प्यार जिन्नी तू सेव्या भाव कर। हे गुरु रामदास महाराज जिन्होंने तेनू भावना करके सेव्या है तेरी सेवा की है तेरे दर की फिर की होया सेत पार उतारिया उन्हों का तू पार उतारा कर दिता भंडारे भर दिते ने। तो इस करके जेड़ा बंदा भी गुरु रामदास महाराज के दर नाल जुड़ जाता है गुरु रामदास महाराज ओनू भी बादशाह बना दें।

तै नाहन तन जूरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भज्यू ना गुरजन सेवियो नह उपजू कछु ज्ञाना घट ही माह निरंजन तीरा तै खूजत उदयाना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई।